0: Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.
1: तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले जब दिल मिले तब गुल खिले जब दिल खिले तब दिल मिले मिले मिले मिले मिले दिल मिले

0: Sunrise Retro.
1: Sunrise Retro.
2: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई, सांभलो रे सांभलो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओए जरनल सिंह, ओए जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो,
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो,
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: This is Sunrise Retro.
1: Ready for a taste of Sri Lanka? Come home to Sri Lanka at Copper Ceylon, Bromley's multi-award-winning Sri Lankan restaurant. Feel the heart of authentic curries, taste crispy, delicious hoppers, sip signature cocktails, and soak up the vibrant atmosphere of Sri Lanka right here in Bromley. Whether it's a night out, a special celebration, or catering for your next event, Copper Ceylon brings the flavours of the island to your table. So what are you waiting for? Book your table now at copperceylon.com. Copper Ceylon, come home to Sri Lanka.
2: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: नवरात्रि के रंग में मिला है और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा नमकीन मैंगो पल्प चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
2: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
4: एंड नाउ द वेदर।
5: आउटसाइड ग्लूमी स्काइज, अ परसिस्टेंट ड्रिजल एंड अ चिली विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट नॉर्थ ईस्ट and south.
6: But inside, temperatures of toasty warm with a high chance of plush rugs, soft lighting, and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting, and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T's and C's and exclusion supply. Find out more at ikea.co.uk.
7: Think outside the lunchbox. Grab the Meal Deal Plus from McDonald's. It's plus because you get a snack wrap or cheeseburger, plus medium fries, plus a selected drink, plus one of six bonus sides. All that savour satisfaction, plus it's only $5.59. From 11 a.m, not on delivery. Includes a selected savour menu main, medium fries, selected medium drink, and a selected bonus side. Price and participation may vary.
8: Ye hai Sunrise Retro.
0: Back-to-back songs with the Sunrise Radio app. Download now for free for Apple and Android devices.

0: This is Sunrise Retro.
1: Winner, winner, roast for dinner! This autumn at Aldi! Feed four for under £7 with British whole chicken, broccoli, carrots, roast potatoes, chicken gravy granules and Yorkshire puddings. Tuck into low prices at Aldi. For full T's and C's, see aldi.co.uk/swap.
2: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन भर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
2: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
4: एंड नाउ द वेदर।
5: आउटसाइड ग्लूमी स्काइज, अ परसिस्टेंट ड्रिजल एंड अ चिली विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट and south.
6: But inside, temperatures of toasty warm with a high chance of plush rugs, soft lighting, and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting, and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T's and C's and exclusions apply. Find out more at ikea.co.uk.
7: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn, and blackberry-stained fingers. A wrong step in a stream. Muddy trousers and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.
8: Advertise on Sunrise Retro today. London's Retro Asian Mix. Call the Sunrise Retro sales team on 020-8574-7777. Sunrise Retro. London's Retro Asian Mix.

0: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. Make every day grand.
1: City Bond Travel, with over 50 years of turning dreams into unforgettable journeys. From flight-only bookings to tailor-made holidays, honeymoons, safaris and escorted group tours, City Bond Travel does it all. Discover special offers to India, Dubai, the Maldives, the Caribbean, Africa, the Far East, South America and many other destinations. Call our City Bond Travel specialists on 0208-206-3620 or visit citybondholidays.co.uk. City Bond Travel, your world, your journey at all protected.
2: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn and blackberry stained fingers, a wrong step in a stream, muddy trousers and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.
1: Advertise on Sunrise Retro today. London's Retro Asian Mix. Call the Sunrise Retro sales team on 020-8574-7777.
3: Ye hai Sunrise Retro.

0: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम इन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम इन खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
0: जेम इन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
2: This Diwali, give yourself and your loved ones the ultimate celebration, the gift of unmissable travel. Citybond Escorted Tours is offering an exclusive Diwali special. Save £100 per person on all 2027 group departures. Whether you're dreaming of exploring Japan, discovering China and Hong Kong, or experiencing South Africa, Australia and New Zealand, your unforgettable journey starts here. This festive offer must end November 10th. Call

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: नहीं भार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: सनराइज रेट्रो।
1: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद, ऐसी जेम एंड फूड की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेम एंड खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ। विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे।
1: जेम एंड फूड, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया।
3: Honey, I was in the pet aisle, and you'll never guess what.
4: What is that?
3: A gerbil. They were on sale.
4: Why would we want that?
3: They were doing 3 for 2.
5: Get the things you actually want for less. New lower prices are here to stay across storage, sofas, mattresses, and more. Available online and at your local IKEA. IKEA. A wonderful everyday.
0: Advertise on Sunrise Retro today. London's Retro Asian Mix. Call the Sunrise Retro sales team on 020-8574-7777.
6: Sunrise Retro.

कर, अरे तेरी भूला आकर जाकर पीकर लेकर, आकर जाकर पीकर लेकर, आकर जाकर पीकर लेकर, पीकर